0: थो रेडियो नेपाल ख नेपाल भाषे समाचार जिउ भेष पाखी निनादिस थौ नेपाल सम्बत छिन्स सौ पिकु द दिलाथो षष्ठी सरकार खुसी बा चल लिसी डुबान्थे जागो मनसुन जन्य विपदे जोखिमिया त विचायना जोखिमिया अवस्था मूल्याङ्कन निना जग प्रभावित जिल्ला सवारी साधन ह्याके बिगु जुगुदो देया नि छगो जिल्ला त चोक वा वैगु हो ता दुगु जल दिसे मौसम विज्ञान विभाग पूर्वमान लिपा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण लिसे व्यवस्थापन प्राधिकरण पूर्व तारिया त त चोएको गुख प्राधिकरण या निमित्त कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कुमार कोइराला सम्भावित चल व खुसी बा या उच्च जोखिम दुगु सडक बे सवारी साधन सञ्चालन दिकेको निर्णय नागरिक या सुरक्षा या त ध्यान तया या नागु धैदिगु ख जोखिम या अवस्था या त विचायना चल हुने फुगु जिल्ला सवारी साधन सञ्चालन मया त इनाप या नागु ख निमित्त कार्यकारी प्रमुख कोइराला धाइदिल मौसम व सडक या वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन निर्णाजक सवारी सञ्चालन च्याकिएको जुई वेक कथ सुरक्षा निकाय स्थानीय प्रशासन व सडक विभागले से मधिक समन्वय जुया चङ्गु दो जोखिम हो जुगु पुष्टि जुई धुका चक राजमार्गले से मेमेगु सडकीय सवारी सञ्चालन यागु अनुमति बिगु जुगु दो प्राधिकरण सर्वसाधारण या त मौसम लिसे सडक सम्बन्धी आधिकारिक सूचक या जग यात्रा या त जोखिमयुक्त सडक वे मुक मुक वे वने मया त लिसे स्थानीय प्रशासन व सुरक्षा निकाय या त उज पालना या त इनाप यागुदु थोथी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग तरहङ्गो खुसी बा वैगु सम्भावना मोजु सातबी चिचिधङ्गो खुसी बा वे फैगुली वा च्याके त इनाप यागुदु मदिक वगु वा या हुने देया थिति थासे खुसी बा चल ख राजमार्ग त सिङ्गुदु काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुली स्वाइगु बिपी राजमार्ग अन्तर्गत खुरकोट नेपाल त कटुङ्ज बेसी सडक खण्डे बहनी आउजात दिकुगुदो इलाम नगरपालिका राजदुवाली या मेची राजमार्गे पङ्ग लागुदो थोथी अर्घा खाँचिया पाणिनी गाउँपालिका दुई ढुङ्गे खोला लोङकुटुया सालचण्डी ढोरपाटन सडक खण्ड पूर्ण रूपमा पङ्ग जुगुदो अथे सिन्धु पाल्चोक या पोटेकुसी गाउँपालिका चार जिरो किलो व वडा नम्बर दुई कोदारी अर्नेको राजमार्ग तिगुदो बागलुङ्गा जैमिनी नगरपालिका बेल बगर लागा कालीगण्डकी कोरिडोर पङ्गले लागुदो थोथी काभ्रे पलाञ्चोक या रोसी गाउँपालिका सात घुमाउनी वडा नम्बर आठ गिम्दी व वडा नम्बर नौ बिरुवा डाँडा व पिन्थली लागा चलख लाना बिपी राजमार्ग पुङ्क तिगुदो पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत इच्छा कामना गाउँपालिका दुई फिस्लिङ या पानी धारा व चुम खोला चल ख सडक पङ्ग लाकुदो थौ सुथे निता इजुया निगु नेटे चल कुटुना आवागमन पङ्ग लागु ख जिल्ला प्रहरी ज्याकु चितवन या प्रमुख प्रहरी उपेक्षक रामेश्वर पौडेल कथ सुथे गुता इतक दुनी चा लो चिका यातायात च्याकीको कथ तयारी जुगु निटना दिगु दु थोए दोथी नारायणगण मुगलिङ सडक जुया पोखरा वनिगु गाडी थासा सञ्चालने ओया चुङ्गु ख मिग आपल वा वगु हुने नारायणगण मुगलिङ सडक खण्ड व चितवन या पृथ्वी राजमार्ग लागा चल चिकेगु कथन ह्याकुगु ख राष्ट्रिय गौरव या कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत बेनी जोमचोम कोरला सडक आयोजना बहनी मचालिगु जुगुदो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मुस्ताङ जिल्ला न्यायगु काली गण्डकी खुसी नाप चिचिधङ्गु खुसी बा वोगुली थथे यागु थागुदु प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत या कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति बाल सुधार गृह दुपी मस्तेगु मानवाधिकार सुनिश्चित नीति कार्ययोजना हेत सरक्रिया त उज बिगुदो समिति या मिग चुङ्गु मुजे बाल सुधार गृह दुपी मस्तेगु मानवाधिकार समिति निरीक्षण व अवलोकन उपसमिति समिति ह्योबोगु प्रतिवेदन या त सहल या थुङ्का स्वापुडुगु मन्त्रालय या त थथे इनाप यागु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विकास निर्माण या केन्द्रीय मानव प्रक्रिया त स्वयमा थैदिगुदु इन्जिनियर्स एसोसिएसन या खुइ पेकगु द मुजिया लसद्या मिग ये जुगु ज्याजोस वेक्ल थथे धैदिगु ख दक्ष ल्याम लजगा होता चु लाके त विदेशे उनीगुली उकिया त दिके त माग थ ज्याजो हे त सरकार या ध्यान सलाहका दिल नेकपा एमाले नायक केपी शर्मा ओली जनता या स या त तथ्य तर्क अधिनाप सशक्त रूपमा संसदेन हेवे त थ संघीय सांसद पिन त उज ब्यादिगुदु एमाले केन्द्रीय संसदीय विभाग मिग पार्टी केन्द्रीय ज्यागु ज्यासोले यागु प्रशिक्षण ज्याजुले नाय ओली थथे धैदिगु ख नाय ओली प्रतिपक्षीय ज्या धैगु सरकार याकु खेनिगु जक मुखुसे सरकार या त माकथ लिस बि फैगु कथ कुत ब्याकेगु जी मागु खे ब ब्यादिल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा सुशासन या त केन्द्रीय तया संविधान शोषण या सल झ्याकेमा धैदिगुदु प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्किम हिग पोखरा गोसागोगु संविधान संशोधन सुसाप विशेष या गोष्ठी सभापति थापा थथे धैदिगु ख वेक्ल संसद कार्यकारी प्रमुख लिगु शासकीय स्वरूप व मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हे प्याची जुगु नियत नादिल येल जावला खे या सदर चिड्याखाने बर्फु सङ्कन पुस्ती जुई ढुङ्का निन हेनु चिड्याखाना बन्द जुबले सङ्गु करोडा द्याप लागु थागुदु बर्फु सङ्कन जुई ढुङ्का राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष असार पाँच गते निसे चिड्याखाना तिगु ख नेपाल प्रहरी अनलाइन सट्टेबाजी यागु दो पनि ये पाखे पेमसित जोङ्गुदु जिल्ला प्रहरी परिसर ए या प्रहरी उपेक्षक पवन कुमार भट्टराई कथ ए महानगरपालिका एक नारायण चौर इन्टरनेट सर्भर सिम कार्ड ल्यापटप मोबाइल फोन नापो उमित जोङ्गु ख कालीकोट या टेकेन्द्र शाही बर्दिया विश्व रेग्मी अजय महतरा व बा के या आदित्य वाल्मीकि या त प्रहरी जोङ्गु ख उमिस थ्य मथ्य निगु करोद्या कारोबार यागु सिरुगु दु नाजाम आख्यानकार मल्लकेश सुन्दर चुयादीको सेप्टेम्बर सत्र नयाँ नेपाल भाषा या उपन्यास या अङ्ग्रेजी संस्करण पिहा वगुदु ए महानगरपालिका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता डङ्गोल उगु अङ्ग्रेजी संस्करण या पितो बोज्या यनादिगु ख ए या द्वारिकाज होटेली जुगु उगु ज्याजल ए महानगरपालिका कार्यवाहक नगर प्रमुख डङ्गोल पितो बोज्या यनादिसे मल्लके सुन्दर बहुआमिक व्यक्तित्व ख ध्या दिल वेक या आख्यानकारिता या त वेगमा प्रशंसा नप यनादिल नेपाल भाषीय साहित्य थथे अङ्ग्रेजी भाषा पिदङ निगु धैगु छगु ऐतिहासिक घटना ख धका न वेक्ल कनादिल थो अङ्ग्रेजी संस्कृत अनुवादक डाक्टर ज्योति प्रभा तुलाधर ख रुस लिपाङ्गुले युक्रेन राजधानी किबे आतक हे दकले तरङ्गु आक्रमण यागुदु रुस युक्रेन राजधानी किबे तरङ्गु ल्याखे ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार यागु ख समाचार एनजिसी कथ रुस युक्रेन युद्ध सुरु जुदुङ्गा थो आतक हे दकले तरङ्गु आक्रमण ख आतक या दकले तरङ्गु आक्रमणले लाना पिम सिगु दुदासा सुइछेम खापा जुगुदु रुस लिपाङ्गुले बनिसियाले आक्रमण यागु याना उयाचुङ्गुदु अर्जेन्टिना या त बुका स्पेन हाक्न छक फिफा विश्व फुटबल कासा ट्याकुगुदु थो निहने स्पेन सन् 2010 विश्वकप ट्याकुगु ख मिग अमेरिका जुगु कासे स्पेन अर्जेन्टिना या त छग गोल बुकुगु ख स्पेन फिफा फुटबल कासा ट्याकेटुङ्गा लु या कप नाप निए छगु मिलियन अमेरिकी डलर या शेर्पा ट्याकुगुदु लिउ लागु अर्जेन्टिना स्विपेङ्गु मिलियन डलर चित्त फेमाल अथे लिया लिउ लागु इङ्ल्यान्ड स्विगो मिलियन व पेङ्गुगु थलखे लागु फ्रान्स नि च्यागु मिलियन डलर क्या दैगु जुगुदु थोए दोथी विश्वकपे नुम कासामी कथ पाउ कुर्बासी स्पेन या त लियोगुदु अथे गोल रक्षे गोल्डन ग्लोभ्स त्याम उनाए सिमन्स स्पेन अथे हे स्पेन या रोड्री या त गोल्डन बल त्याका बिगु दुधासा आफ्नो गोल यानादि म किलियन एम्बापी या त गोल्डन बुट ल लागु ख किलियन एम्बापी छिगो गोल यानादिगु ख थौ देङ्क सामान्यले से मदिक वा वैगु थागदु छुचु थासे नन्याना ल्हाप्सा तोइगु व हिमाली लागे चपु क्वा वैगु दुकमा यागुदु मिग ये नि च्यागु फुटी सुङ्गु डिग्री सेल्सियस या क्वाज लु गुख धासा थौन थथे लुइगु दुग्मा यागुदु सोनिगले सुथे न्याता इजुया चिनसुङ्गु मिनेटे लुगु सूर्द सनिलिया नेता इजुया न्यागु मिनेटे बि नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ
1: हाम्रो संस्कृति
2: हाम्रो परम्परा सभ्यता हाम्रो नेपाल राम्रो संस्कृति पवित्र
1: लुकेका स्वर्ग समुच्च जाति यसमा छन् विचित्र

जटा सरी छा जटिलियो महिमा माया जाल बुझायो। जटा सरी छा जटिलियो महिमा

लुइला गिक्सा प्रहरी आमा बिबा बोली थिबा लिच्छा टुकु टुकु ब्राबरी लोप्प दुइरी आमाला श्यामाला कुनिचुङसी दोब हिन्ना दिमगामला छोर्तेन्डी कुन्जो सुम्दा मोइबो लाबारी आपाला याचुङसी गामलन लोपखाङरी कख डोबारी निमामी जिन्दा सुम्री दोबलिछा डोबरी चुबा हिन्ना गाई राजकुमार थे निमको पात बिबा राप ग्यामसेन सेवा हिन्ना गाई साङ्गे चुम्दन देदा आखेलामा से दोमाङ डोमा आखेलामा से दोमाङ डोमा साङ्गेला कुदा गाछ थान्सी सम्भोटा लिपिरी बिबा छोई त्रिपिटक डोबा दुई ह्यान्से धोबरी सेमताबा गा बुद्धिस्ट ओम हिगिरी ब्रिबा अक्षर राङबान खाइमाइम लेबरे आखाम गाई सेब लसी थान्बा मोला गाला क्रासियारी हिंसा लाला आदि बिबा छ लसिन टिजी हिंसाला विरोध नाभन खाजी सामन्तल शासन यसे लोप्प मुबा डोब दुईरिन धर्मला ताम गणिसे गोबरे आखामजी धर्म ह्युर्बल लागिरी अफिम रो गणि अफिम सिङ्योइसी शोषण नासी टिजी जब गणिसे गोबरी चुजी थे दुईरी साङ्गे चुम्दन्देला शान्तिला मोलम पाङबन तुम्बक पुइबा दुई खासी जिन्जिम ब्यानबरी थिएन ह्युलाबारी आत विवाह थाहा मुना मुनान ब्यानबारी थिएन ह्युलाबारी आत विवाह थाहा मुना मुनान फोइथान फो ना आखाम ना धार्मिक आस्था द कुरी थान्से याद तुम्बक फैदान फोसी गोली सेङ्सी ब्यानबारी चुब हिन्न शोषक सामन्तीला दरबार मिलन ओन्छाङ्री मिलन ओन्छाङ्री जामेकोला बलात्कार ताबा म्राङमा सेम्री शान्तिला मन्त्र किन्सी घारमन थोब हिन्न सिलमाङ तलवार थोसी बलात्कारीला प्रतिरोधरी सरकार सरकार यसै तामझामला छ्याम्री ठङसेङ लाबा धरहरला चुद ग्याम्से यसै तामझामला छ्याम्री ठङसेङ लाबा धरहरला चुद ग्याम्से म्राङला आखाम सालामी यदा गाम्बा साप्राला जजुबा उम यदा गाम्बा साप्राला जजाबा उम गाला गोसेबा गाला रिमठिम छोर्थेन एला धरहरा बिमा खलङ माबा मुलार एला धरहरा बिमा खलङ माबा मुलार हिन्न हिन्न गाथेन छोर्थेन नि ग्रान चावन छार सामन्त बाध ध्वस्त लाबारी छार खलनायक कदेता बेन लाबारी गाला युल्दा सोन लाबारी तुम्बाक थोबा साङ्गे चुम्दन्देदा तिन्सी शान्तिला मुलम गोली सेङ्सी थोन्मन मुला ओम मुनि मुनि महा मुनिया स्वाहा छार रण कौशल थोसे रण मैदान रे छार रण कौशल थोसे रण मैदान रे चुमुबा रचना मोक्तान यात्री से पुइखा भाइखा छोर्थिन जुदे जब जब वाइखाका दल लागिरी काभ्रेला रचना मुक्तान यात्री आँगा लामा लामन थुजे छे रङ्गनी बेनादन विशेष विशेष थुजे छिपिमान दिपेन दिपेन खाबरी गदे रेनुन चुराङमान वाइखा गजल थे नामदर गदे मुला विशान बेसी पुई खाबरी मोइजन मुला उसेम रचना आँगा इडाङला सफल एम्बुस ताङबरे आखाम्बासेम खाबरेरी योनन प्रसारण लाचल मुला या विवान तिनीलाई लागिरी वाइखा थेन गजल गदे चित्तेन

0: su radio nepal hinna tamang sangyu rirang ni da dhenmula nga indira thing kaiblon balendra sahase datela sarkar se yulla nor thumda jaba sobari puji bazar da bishesh prathamikta pindola bisisungba mula puji bazar ten saroka thanba gendun ten niyaman lavan khaba nikayla mulmika de ten tini kathi lachiban kaiblon sahase puji bazar se udyamshilta lena labari ten ge pinbari khamba se sarkar se विशेष प्राथमिकता पिन्सेदा मुलाबिसी सुङबा हिला काइब्लोन साहाचे छोङखेन कादेदा बङ कोङबा सोबारी थिएन नेपालला पुँजी भजार्दा व्यवसायिक थिएन मर्यादित सोबारी नोन मोइजेन लासियोबा मुबा काइब्लोन साहाथेन काठी लाबा लिछा सरकार थान्बा थिएन नियमन लाबा घेन्दुनला मुल्मी कादेसे सार्वजनिक निष्ठालन थिम्दा ज्याबा सोसी पिनबारी बजारला माग थिएन आपूर्तिला सन्तुलन दा ढिक्ना लासी साई तोक लाबारी खाम्बा टिम सोसी पिनबारी थेन रेदाङसे अर्ब सोमचुई बिमा लाना छोङ लाबारी खाम्बा भातवरण सोची पिनबारी सरकारदा मोइजेन लासियुबा मुबा जल थेन मौसम विज्ञान विभाग से हुला लोलो लोलो जोङ कादेला घान्दिरी क्युई लेबारी खाम्बा ताबासे चु गाम्री चिबा मिनी कादेदा सातारका ताबारी मोइजेन लाबा मुला विभाग से पाङबा अनुसार गोर्खा रूपन्देही अर्धखाँची कपिल वस्तु थेन दाङ जोङ ग्याम ब्योङबा जाजा गान्धी कादे रिनोन ग्रेन भाल खाबारी खाम्ला बिसी पाङबा मुला चुराङ लासिन झापा मोरङ इलाम सुनसरी पाँच थर तेह्रथुम दोलखा सिन्धुपाल्चोक काभ्रे परान्चोक याम्बु भक्तपुर ललितपुर चितोन कास्की तानहु स्याङ्जा पर्वत बागलुङ गुल्मी पाल्बा नवलपरासी स्यार नवलपरासी नुप प्युठान बाँके बर्दिया डोटी डरेल धुरा कैलाली कञ्चनपुर बैतडी थेन धारचुला जोङला गाम्री चिबा मिनी कादेधारथोन भाल ला जोखिम ग्याम सजक ताबारी मोइजेन लाबा मुला विभाग से स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकाय थिएन स्थानीय तहदानोन भाल खाबारी खाम्बा दा गोसी तयारी धुरी चिबारी मोइजेन लाबा मुला चुराङ लासिन लाना नाम ताइबासे उदयपुरी भाल ढुइसे जोखिम लेबारी खाम्ला विवान सतर्क ताबारी मोइजेन लाबा मुला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से पाङबा अनुसार दखाबा रारी जोङला लानन ग्लारी नाम ताइबारी खाम्बा राङबासे प्रशासन से तोबा तयारी गाछन लाबारी मोइजेन लाबा मुला रूपन्देहीला तिनाउ गान्धी ग्रेन भाल खाबासे गान्धी गाम्री चिबा कादेदा सतर्क ताबारी जलथेन मौसम विज्ञान विभाग से मोइजेन लाबा मुला जलथेन मौसम विज्ञान विभाग से रेङेन हेन्से कोलेसे नाम ताइबा च्याङना ताबान निलाबिसी पाङबा मुला विभाग से दाते युल नाङरी मनसुनी लाबाला प्रभाव मुबा थेन मनसुनला न्यून चापीय रेखा झ्याङ क्यार मुबासे लानन थुम्री नाम ताइबान मुलाबिसी पाङबा मुला राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण थिएन व्यवस्थापन प्राधिकरण से पाङबा अनुसार लिछाला निचुई ब्ली घण्टारी ह्युल नाङरी विपदला गोरु डुचुई नि घटना ताबा मुला चुधुरी ह्युल नाङला ग्ला ग्लारी ढुई निबा गोर चुई घिका सडक घ्यालाम बन्द ताबा मुला मेन्दो नि मिनी सिबा मुला बिसामा मेन्दो चुई गा घाइते ताबा मुला बिसी प्राधिकरणला सुङबोन शान्ति महत से सुङबा मुला प्राधिकरण से तिनी सार्वजनिक लाबा विपद बुलेटिन डी विपद ग्याम लाख चुइनी विमान लाना नोर छेती ताबा मुला गोर्खा थुम नम्बर गिक ग्याम डासिबा सांसद थेन दिम ब्लोन सुदन गुरुङ से राङ खाम्दे दोना ला लारी जोङ खाबा बिसी सुङबा मुला गोर्खा नगरपालिका नाङला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजोपाला गोबन कादेथेन लिङमोला सिबान ब्लोन गुरुङ से चुताम सुङबा हिन्ला सोमरा हेन्से गोर्खारी मुबा ब्लोन गुरुङ से जोङला प्रशासनिक थेन सुरक्षा निकायला ग्रेन्पो कादे थेन रूप ताबान विकास योजना कादेनोन आशियुबा मुबा पूर्वाधार विकास ब्लोनखाङ यातायात व्यवस्था विभाग से लाइसेन्स किनबारी लुई जाँच लाबा धुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल डी धर्ता तासी इजाजत किनबा डाक्टर कादेसे पिनबा लुई जाँच लाबा प्रमाण पत्रदा मान्यता पिनबा व्यवस्था ढिक्ना लाबारी गोर्निस नोन प्रदेशला यातायात थुम च्याबा ब्लोनखाङ कादेदा मोइजेन लाबा मुला विभाग नाङला सवारी अनुगमन मापदण्ड शोभाथेन सवारी सेङ्बा व्यवस्थापन शाखाला निर्देशक गणेशमान सिंह राइसे निभा असार निचुई सोमचुई निला कुनो तेबा पत्ररी पाङबा मुला चुराङलासिने यातायात व्यवस्था विभागसे नेपाल मेडिकल काउन्सिल ग्याम मान्यता याङबा डाक्टर कादेला विवरण रिबा मुला राष्ट्रिय सभाला सांसद कार्यसे युलमाङ जामेकोला आयोगला गे बिबार राङबा ताबारी आखाम्नी विमान आयोग दातेला भीमा ज्याबा सोबारी सुङबा मुला संघीयता सबलीकरण थेन राष्ट्रिय सरोकार समितिला तिनीचिबा चिसाङरी सांसद कादे उदय बहादुर बोहरा श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी रोशनी मेचे धमेन्द्र पासवान नारायण दत्त मिश्र थेन विष्णु कुमारी सापकोटासे हिंसा पीडित जामेकोलाला न्यायरी पो लेना लबा सुरक्षा राङबा ताम्री युलबाङ जामेकोला आयोगसे ज्याना लासी गे लाबारी खाम्बा आरएबिसी सुङबा मुबा संघीय संसदला संसदीय अध्ययन थेन अनुसन्धान महाशाखासे जामेकोला आयोगसे लबा गे चिसाङरी थान्बा मुबा सरकारसे सार्वजनिक विधादा च्यासी गोबारी दिम्लोन खाङला रो लोनला थुतबोन्डी मेन्दोब्ली सदस्य घेदल शोभा ताबा मुला ग्रेन लोन गोविन्द बहादुर कार्कीला चोबाङरी तिनी चिबा लोन कादेला चिसाङसे हप्तारी काम्रे शनिबार थेन दिनीरे आइतबार निरा विधा पिनबारी तिबा लिछा साबिक्री मुबा स्यान्दो सार्वजनिक विधादा च्याबा गोबारी होजा घेदल शोभा निर्णय लाबाखिला घेदलली काइब्लोन थेन लोन सेङझाङला गेजाङ सा व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला थेन सामान्य प्रशासन थेन नोर ब्लोनखाङला मुल्मिदा थान्ची होजा गेदलसे चुई घारा नाङरी दिम्लोन खाङरी प्रतिवेदन पिन्बा पिन्दोसेदा मुलाबिसी ग्रेन लोन कार्कीसे छ्याहिक लबा निर्णयरी पाङबा मुला कञ्चनपुरला शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नाङरी श्यामु दुईबारी निभा जामेकोला कादे सम्पर्कारी खाबामुला भीमा दत्त नगरपालिका चुइगु बागा फाटला जामेकोला कादे सेनासे माइबान निमा स्यापहिनला शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जला सुरक्षारी खर्दिबा रणसिंह दल गणला गणपति ग्रेनपो सेनानी प्रकाश घिमिरे सेसुङबा अनुसार तिनी स्योधोन दोना मोकोन जामेकोला कादे दिम थेमेला सम्पर्करी खाबामुबा निकुञ्जरी श्यामु दुईबारी निमा माबा जामेकोला कादेदा सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी नगर प्रहरी थेन निकुञ्जला प्रशासनसे माइबा मुबा बारा जोङरी ला चुइब्रेला जाजाकोला सुन सुबा भुरी छ्याबा क्युरी ब्लुम्सी सिबामुला बाराला सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर निस गौर हियारी सुन भुरी छ्याबा क्युरी ब्लुम्सी महागढीमाइ नगरपालिका वडा नम्बर कु बलुवाला राजेन्द्र महतोला ला चुइब्रेला जामे लालु कुमारी मेहता सिबा मुलाबिसी जोङ प्रहरी गेजाङ भारासे पाङबा मुला प्रहरी से पाङबा अनुसार तिलमा ङ्यासे आसेङला धिम्री निबा धुइरी बुरी छ्याबा क्युरी क्लाङबा धुइरी ब्लुम्सी होजा जाजा कोला सिबा खिन्ला अर्जेन्टिना दा ब्रेना लाबान युरोपेली च्याम्पियन स्पेन से चुई डु दिङ लिछा फिफा विश्वकप 2026 ढाबा मुला स्पेन से चुङाछा सन् 2010 री विश्वकप ढाबा मुबा अमेरिकाला न्युयोर्कला न्यू जर्सी स्टेडियम री स्पेन से गोल गिक से अर्जेन्टिना दा ढाबा हिन्ला स्यान्सिबान मुबा सानगुर जिन्जे फ्याफुल्ला
1: के तपाईँ खोला नदीनाला छेउछाउमा बसोबास गर्नुहुन्छ होसियार बर्सातको समयमा खोला नदीमा पानीको सतह बढेमा तुरुन्तै अग्लो र सुरक्षित स्थानमा जानुहोस्
2: विपद बाजा बजाएर आउँदैन त्यसैले बाढी पहिरोको जोखिम हुने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण कागजात र आपतकालीन सामग्री तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्
1: हल्लाको पछिल्लो लागि आधिकारिक सूचना र मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनुहोस्
2: रेडियो नेपालद्वारा जनहितका लागि
3: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
4: नेपालको समावेशी आवाज
5: हामी रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ अब हामी यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ केही बेर विभिन्न कलाकारहरूका स्वरमा रहेका लोकदोरी गीतहरू पहिलो गीत सुनाउँछौँ पशुपति शर्मा र टिकापुनको स्वर शान्ति प्रिया र दीपक शर्माको शब्द सङ्कलनमा।

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वर्तमान सरकार देशक आर्थिक विकास आ समृद्धिक लेल पूँजी बजारके विशेष प्राथमिकता देल गेल स्पष्ट कयलनि अछि। पूँजी बजारक सरोकार वाला संस्था तथा नियमनकारी निकायक प्रतिनिधि सभ संग प्रधानमन्त्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालयमे आइ भेल छलफलमे ओ पूँजी बजार मार्फत उद्यमशीलताक विकास आ रोजगारी सृजना करबाक कार्य सरकारक मुख्य प्राथमिकतामे रहल बतौलनि अछि। व्यवसायी सभके उच्च मनोबलके संग काज करबाक लेल आग्रह करैत ओ नेपालक पूँजी बजार के व्यावसायिक आ मर्यादित बनाओल जेबाक बात पर जोर देलनि। एहिसँ उद्यमशीलता फसटेबाक आ रोजगारीक अवसर सभ थपबाक उल्लेख करैत ओ नीक काज करयवला के सरकार सदैव प्रोत्साहन करबाक मुदा गलती के निहार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के नीति अपनेबाक स्पष्ट कयलनि। छलफल के क्रम में पूंजी बाजारक सरोकार वाला संस्था सभक प्रतिनिधि सब द्वारा बाजारक स्थायी विकासक लेल कानूनी नीतिगत संस्थागत आ प्रणालीगत सुधारक आवश्यकता रहल सुझाव देलनि। प्रधानमंत्री शाह संघक संवाद सँ हमसभ और अधिक प्रोत्साहित भेल उल्लेख करैत ओ लोकनि प्रारंभिक सार्वजनिक निष्कासन प्रणाली में सुधार करबाक दोसर बाजार में मांग आपूर्तिक संतुलन मिलाकर उचित मूल्य निर्धारण प्रणालीक विकास करबाक तथा दैनिक कारोबार रकम के 30 अरब टका सँ अधिक पहुँचबाक वातावरण बनेबाक लेल सरकार सँ आग्रह कयलनि। एहि छलफल में स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ नेपालक अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सिक्योरिटीज प्रतिनिधि संदीप जालान, नेपाल लाइफ इंश्योरेंसक प्रतिनिधि नवराज सिलवाल, नारिक स्टॉक डीलर कंपनी लिमिटेडक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वर लाल श्रेष्ठ, पूंजी बाजार समितिक सभापति प्रिय राज रेग्मी आ लगानीकर्ता अंबिका प्रसाद पौड़ेल सहभागी छलथि। सरकारक सचिव सभक बैठक शासकीय सुधारक 100 कार्यसूची अंतर्गत सम्पन्न भेल। सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाह सुधार आ निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण सहित क्षेत्र में भेल असल अभ्यास के निरंतरता देबाक निर्णय कयलक अछि। मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्किक अध्यक्षता में आई भेल सचिव बैठक कार्यसूची में उल्लेखित मुदा कार्यान्वयन के लेल गठित कार्यदल आ समिति से प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन करबाक, ओकर प्रभाव मूल्यांकन करबाक, आंतरिक संयंत्र बनाकर शासकीय सुधार के निरंतरता देबाक निर्णय कयलक अछि। बैठक कार्यसूची अंतर्गत मंत्रालय निकाय पूर्ण रूप में संपन्न करबाक लेल बाकी कार्य यथाशीघ्र संपन्न करबाक हेतु संबंधित सचिव स्वयं ओकर प्रगति ट्रैकिंग करबाक निर्णय कयलक अछि। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मार्फत पहचान कयल गेल अनावश्यक प्रक्रिया, कागजात तथा तह सब हटाकर निर्णय निर्माण यथाशीघ्र सरल आ नागरिक मैत्री बनेबाक बैठकक निर्णय अछि। बैठक जेएनजी आंदोलन के शहीद परिवार आ घायल के लेल बीतल 18 गते के मंत्री परिषद स्वीकृत कयल एकीकृत पैकेज के शीघ्र कार्यान्वयन करबाक निर्णय कयलक अछि। बैठक सेवा प्रवाह में थप सहजीकरण आ विकेंद्रीकरण करबाक, कर्मचारी क्षमता विकास, विपद पूर्व तैयारी आ प्रतिकार, आर्थिक अनुशासन आ खर्च में मितव्ययिता सहित 22 मुद्दा निर्णय कयलक अछि। सरकार सार्वजनिक छुट्टी के पुनरावलोकन करबाक लेल गृह मंत्रालय सह सचिवक संयोजकत में 4 सदस्यीय कार्यदल गठन करयवला भेल अछि। मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्किक अध्यक्षता में आई भेल सचिव सभक बैठक सप्ताह में शनि दिन आ रवि दिन 2 दिन छुट्टी देव लागल पश्चात साबिक में रहल अन्य सार्वजनिक छुट्टी के पुनरावलोकनक लेल ई कार्यदल गठन करबाक निर्णय कयलक अछि। कार्यदल में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषदक कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन आ अर्थ मंत्रालयक प्रतिनिधि रहबाक आ ई कार्यदल 15 दिन भीतर गृह मंत्रालय में प्रतिवेदन पेश करबाक मुख्य सचिव कार्कि द्वारा हस्ताक्षरित निर्णय में उल्लेख अछि। चालू आर्थिक वर्ष में तर्जुमा करबा सन पहचान भेल विधेयक के मसौदा तैयार करबाक कार्य संबंधित मंत्रालय शीघ्र प्रारंभ करबाक बैठकक निर्णय अछि। बैठक बहुत पुराना, असान्दर्भिक आ संपादन में बाधा पहुंचेबाक तरहक कानून के खारिज करबाक लेल संबंधित मंत्रालय प्रक्रिया आगू बढ़ेबाक निर्णय कयलक अछि। पोखरा उच्च अदालत में 1.5 वर्ष से ऊपर रहल मुद्दा का संख्या गत आर्थिक वर्ष में शून्य में रहल अछि। अदालत में 1 वर्ष से 18 मास भीतर के 8, 6 आ मास से 1 वर्ष भीतर के 177, 6 मास भीतर के 314 मुद्दा मात्र बाकी अछि। 499 मुद्दा फरछोट है बाकी रहल। अदालत के उप रजिस्ट्रार नील प्रसाद पनेरू जानकारी देलनि। अगला आर्थिक वर्ष जिम्मेवारी रहल आयल 750 आ नया दर्ता भेल 1319 मिलाकर गत आर्थिक वर्ष में 2069 मुद्दा रहला पर 1570 अर्थात 75
पॉइंट अर्थात 75.88% मुद्दा फरछोट भेल छल। उच्च अदालत आर्थिक वर्ष 2081-82 में लक्षक 78.07% मुद्दा फरछोट कैल गेला पर गत आर्थिक वर्ष में फरछोट दर किछु कम भेल अछि। गत आर्थिक वर्ष में फरछोट भेल मुद्दा मध्य देवानी प्रकृतिक 475, फौजदारी मुद्दा 903, रीट 192 रहल अछि। सर्वोच्च अदालतक पंचवर्षीय रणनीतिक योजना अंतर्गत अदालत मुद्दाक फरछोट में तीव्रता दैत आयल। उप रजिस्ट्रार पनेरू बतौलनि उच्च अदालत मुद्दाक मिसिल के विद्युतीय अभिलेख रखबाक कार्य के सेहो आगू बढ़ौलक अछि। गत आर्थिक वर्ष में 544 मिसिल के विद्युतीय अभिलेख तैयार कैल जनाओल गेल अछि। अदालत एखन धरि 5341 स्थान मिसिल के विद्युतीय अभिलेख रखने अछि। वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग लेवल नहि भेल कम गुणस्तर आ गैर खाद्य पदार्थ मिसावट युक्त दैनिक अत्यावश्यक खाद्य वस्तुक बिक्री नहि करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। विभाग आई सूचना जारी करैत चोरी पैठारी कयल गेल दैनिक उपभोगक अत्यावश्यक खाद्य तथा पेय पदार्थ लत्ता कपड़ा सहित उत्पादन भौतिक तथा डिजिटल प्लेटफॉर्मक माध्यम सँ बिक्री वितरण नहि करबाक लेल सूचित करौलक अछि। विभाग उत्पादक पैठारीकर्ता ढुहानीकर्ता संचयकर्ता आ विक्रेता के कानून द्वारा तोकल गेल अनुसारक दायित्व तथा शर्त बंदेज पालनक व्यापार व्यवसाय संचालन करबाक लेल आग्रह कयलक अछि। नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान राष्ट्रीय योजना आयोग आ त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच सहकार बढ़ावा वाला भेल अछि। प्रतिष्ठानक गठन आदेश संशोधन संगहि योजना आयोग आ त्रिवी बीच समन्वय बढ़बाक भेल अछि। राजपत्रक भाग 3 में प्रकाशित नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश दोसर संशोधन 2083 में बोर्डक संरचना में हेरफेर भेला पर योजना आयोगक उपाध्यक्ष पदेन अध्यक्ष रहबाक व्यवस्था रहल अछि। बोर्ड में त्रिवीक उप कुलपति आ नेपाल सरकारक मनोनीत दू सदस्य रहत। सरकारी निर्देशक बोर्डक सचिवक जिम्मेवारी वहन करत। योजना आयोगक उपाध्यक्ष डॉ गुणाकर भट्टक अध्यक्षता आ त्रिवी उप कुलपति डॉ भोला थापा सहितक उपस्थिति में बोर्डक पहिल बैठक हालहि सम्पन्न भेल। प्रतिष्ठानक सहायक प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद बीक नया व्यवस्था सँ आयोग आ विश्वविद्यालय सँ नीतिगत आ प्राज्ञिक समन्वय बढ़बाक बतौलनि। विशेषज्ञ समूह थिंक टैंक मानल जाय वाला प्रतिष्ठान अध्ययन के मुद्दा आ विषय वस्तुक लेल संविधानक निर्देशक सिद्धांत आ राज्यक नीति के अवलम्बन करैत आयल अछि। नेपालक सामरिक मामला अंतर्राष्ट्रीय संबंध कूटनीतिक एवं परराष्ट्र नीतिक अध्ययन तथा अनुसंधान के एहिमे अपनाओल जाय वाला उपायक संबंध में नेपाल सरकार के नीतिगत सुझाव देबाक कार्य प्रतिष्ठान करैत आयल अछि। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनसा गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में 1,14,09,501 राजस्व टका संकलन कयलक अछि। गत आर्थिक वर्ष में ट्रैफिक नियम उल्लंघन करयवला 12,603 सवारी साधन संचालक ऊपर कार्यवाही कयला पर एहि मात्रा में राजस्व संकलन भेल। जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनसा कार्यालय प्रमुख खगेन्द्र कुमार दहाल जानकारी देलनि। आर्थिक वर्ष 2081-82 में 28,538 सवारी साधन संचालक ऊपर कार्यवाही कयला पर 2,21,10,500 राजस्व संकलन कयने छल। धनसा जिला में आर्थिक वर्ष 2082-83 में भेल 1,358 सवारी दुर्घटना में पड़कर 82 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 2,198 गोटे घायल भेल अछि। मुक्त हरबा चरबा समुदायक जलवायु न्याय सामाजिक समावेशीकरण तथा भूमि वन अधिकार सुनिश्चित कयल जयबाक सहित मांग सहित 10 मुद्दाक वर्दिवास घोषणा पत्र 2083 जारी करैत मध्य प्रदेश स्तरीय दलित अधिकार सम्मेलन सम्पन्न भेल अछि। महतरिक वर्दिवास में आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायक लेल समर्पित अनुदान संयंत्र DGM नेपालक सहयोग तथा राष्ट्रीय दलित नेटवर्क नेपालक आयोजन में भेल मुक्त हरबा चरबा लक्षित प्रदेश स्तरीय जलवायु न्याय में आधारित दलित अधिकार सम्मेलन सँ घोषणा पत्र सार्वजनिक कयल गेल अछि। घोषणा पत्र मार्फत मुक्त हरबाह चरबाह समुदायक वास्तविक पहचान प्रमाणीकरण सामाजिक समावेशीकरण तथा जलवायु न्याय सँ संबंधित अधिकार प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन करबाक लेल सरकार सँ मांग कयल गेल अछि। एहिना हरबाह चरबाह सहित संकलन प्रमाणीकरण तथा परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 2080 तत्काल राजपत्र में प्रकाशन का कारण मानबाक भूमिहीन तथा बसवासविहीन परिवारक वैज्ञानिक पहचान का व्यवस्थित बसवासक व्यवस्था करबाक तथा मधेसक 8 जिला में तथ्यांक संकलन आ परिचय पत्र वितरण अभियान संचालन करबाक मांग कयल गेल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
कंगोमे फैलल इबोला के प्रकोप से मृत्यु भेनिहारक संख्या 930 पहुँचल ओहिठामक स्वास्थ्य मंत्रालय एहि बातक जानकारी देलक। रेडियो नेपाल से सुनने छलहुँ, मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

जटाशरी छ जटिलियो महिमा माया जाल बुझायो, जटाशरी छ जटिलियो महिमा

0: ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पूंजी बाजार के दीर्घ विकास के लिए कानूनी और नीतिगत सुधार करने की सरकार से संबंधित पक्षों की मांग। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सरकार ने पूंजी बाजार को दी है विशेष प्राथमिकता। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक ने निर्णय प्रक्रिया को तेज, सरल और नागरिक अनुकूल बनाने का किया निर्णय। और एनडी बर्नहम हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान सरकार देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए पूंजी बाजार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। आज प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय में पूंजी बाजार से जुड़े संस्थानों और नियामक निकायों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि पूंजी बाजार के माध्यम से उद्यमशीलता का विकास और रोजगार सृजन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री शाह ने कहा है कि सरकार अच्छे कार्य के करने वालों को हमेशा प्रोत्साहित करेगी, लेकिन अनियमितता करने वालों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। बैठक में पूंजी बाजार से जुड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों ने बाजार के दीर्घकालिक विकास के लिए कानूनी, नीतिगत, संस्थागत और प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। निवेशकों ने यह भी सुझाव दिया है कि बैंक और वित्तीय संस्थानों द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों को 6 महीने के भीतर बेचने पर लगाई गई रोक हटाए जाए तथा शेयर गरीबी ऋण की सीमा को प्राथमिकता पूंजी के बजाय कुल ऋण के 5% के आधार पर निर्धारित किया जाए। नेपाल धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल भट्ट ने कहा है कि हितधारकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने आर्थिक वर्ष 2083-84 की पूंजी बाजार नीति और नेपाल पूंजी बाजार रोड मैप 2083 लागू कर दिया है। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष अमृत लम्साल ने बताया कि बैंक एवं वित्तीय संस्थानों, बीमा क्षेत्र और पूंजी बाजार में सुधार के लिए आवश्यक कानूनों के प्रारूप और संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि बुधवार से देश के वर्षा की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। विभाग ने बताया कि फिलहाल पूरे देश में मानसूनी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है और मानसून की निम्न दाब रेखा सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर होने के कारण वर्षा हो रही है। उनके अनुसार आज दोपहर हिमालयी क्षेत्र के कुछ स्थानों तथा पहाड़ी क्षेत्र के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कोसी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के तराई क्षेत्रों तथा मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी मध्यम वर्षा का अनुमान किया गया है। सरकार के सचिवों की बैठक ने शासन सुधार की 100 सूत्रीय कार्य योजना के तहत सुशासन, संवर्धन, सेवा प्रवाह में सुधार और निर्णय प्रक्रिया के सरलीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू की गई अच्छी प्रथाओं को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की की अध्यक्षता में हुई बैठक ने कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित कार्यदल और समितियों से प्राप्त सुझावों को लागू करने तथा उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक व्यवस्था बनाकर शासन सुधार को निरंतर आगे बढ़ाने का निर्णय किया। बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि कार्य योजना के अंतर्गत मंत्रालयों और निकायों द्वारा शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा तथा संबंधित सचिव स्वयं उनकी प्रगति की निगरानी करेंगे। अनावश्यक प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और प्रशासनिक स्तरों को समाप्त कर निर्णय प्रक्रिया को अधिक तेज, सरल और नागरिक अनुकूल बनाया जाएगा। इसके अलावा सेवा प्रवाह को और सरल तथा विकेंद्रीकृत बनाने, कर्मचारियों की क्षमता विकास, आपदा पूर्व तैयारी एवं प्रतिकार, आर्थिक अनुशासन तथा सरकारी खर्च में मितव्ययिता सहित 22 सूत्रीय निर्णय किए गए हैं। सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के सहसचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की की अध्यक्षता में हुई सचिवों की बैठक ने यह निर्णय लिया है कि सप्ताह में शनिवार और रविवार 2 दिन छुट्टी लागू होने के बाद पूर्व से प्रचलित अन्य सार्वजनिक अवकाशों की समीक्षा की जाएगी। निर्णय के अनुसार कार्यदल में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामले एवं सामान्य प्रशासन तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कार्यदल 15 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि चालू आर्थिक वर्ष में तैयार किए जाने वाले विधेयकों का मसौदा संबंधित मंत्रालय शीघ्र तैयार करेंगे तथा पुराने अप्रासंगिक और कार्य निष्पादन में बाधा बनने वाले कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। वाणिज्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिना लेवल वाले निम्न गुणवत्ता के तथा मिलावटी दैनिक उपभोग के अनावश्यक खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने का आग्रह किया गया है। विभाग ने आज एक सूचना जारी कर कहा है कि तस्करी के माध्यम से लाए गए दैनिक उपभोग के खाद्य एवं पेय पदार्थ, वस्त्र तथा अन्य उत्पादों की भौतिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री और वितरण न किया जाए। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि विज्ञापन क्षेत्र को स्वच्छ, पारदर्शी और पूरी तरह नियामकीय दायरे में लाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग आवश्यक है। आज मंत्रालय में नेपाल विज्ञापन संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि विज्ञापन क्षेत्र को व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार मौजूदा कानूनों, नियमों और प्रावधानों के प्रभावकारी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दे रही है। डॉक्टर तिमल सिन्हा ने कहा है कि अतीत में सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणाली में अनियमितता और अपारदर्शिता रही है, जिसे सुधारने का काम सरकार ने शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से व्यवसाय कर लाभ कमाया जा सकता है, इस विश्वास को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विज्ञापन क्षेत्र को नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञापन नीति 2083 जारी की है और अब इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबु।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ हजुर।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाँकी समाचार। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के अंतर्गत यातायात व्यवस्था विभाग ने 7 प्रदेशों के यातायात संबंधी मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वाहन चालक अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान नेपाल मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाए। विभाग के वाहन अनुगमन, मानक निर्माण एवं चालक व्यवस्थापन शाखा के निर्देशक गणेश मान सिंह राय द्वारा 16 जुलाई को जारी परिपत्र में यह अनुरोध किया गया है। सावन महीने के पहले सोमवार पर आज पशुपतिनाथ लगायत देश भर के शिवालयों में भगवान शिव की पूजा अर्चना और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आज सुबह 3 बजे से ही पशुपतिनाथ मंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में सुविधा हुई। दर्शनार्थियों के लिए 4 अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की गई है तथा प्राथमिक उपचार सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। बाजुरा जिले की हिमाली गांव पालिका 5 स्थित क्यूडी में सोमवार को एक जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक सहित 9 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घायलों में 4 की हालात मध्यम और 5 की सामान्य बनी हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एन्ड्री बर्हम आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के 59वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें वकिंगहम पैलेस में किंग चार्ल्स से हुई एक निजी मुलाकात के दौरान सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे कुछ देर पहले कियर स्मार्टर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उधर डाउनिंग स्ट्रीट पर लेबर पार्टी के दर्जनों नेता इकट्ठा हो रहे हैं। इनमें से कुछ को नई सरकार में अहम भूमिकाएं मिल सकती है। एन्ड्री बर्नहम इससे पहले भी लेबर पार्टी का नेता बनने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। 1970 में लिवरपूल में जन्मे बर्नहम का पालन पोषण एक गाँव में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश टेलीकॉम में इंजीनियर थे, जबकि माँ रिसेप्शनिस्ट थी। दोनों लेबर पार्टी के मजबूत समर्थक थे, जिसके कारण बर्नहम की राजनीति में दिलचस्पी कम उम्र से ही पैदा हो गई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूंजी बाजार के दीर्घ विकास के लिए कानूनी और नीतिगत सुधार करने की सरकार से संबंधित पक्षों की मांग। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि देश के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सरकार ने पूंजी बाजार को दी है विशेष प्राथमिकता। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक ने निर्णय प्रक्रिया को तेज, सरल और नागरिक अनुकूल बनाने का किया निर्णय। और एन्ड्री बर्नहम हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
3: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
6: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
7: *1415# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
8: झण्डु आयुर्वेद,
9: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
8: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
9: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
8: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
9: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।
10: ए गजल की धुन आऊं,
11: गजलकै जलमाथि एउटा डुङ्गा खियाऊ कि, गजलकै जलमाथि एउटा डुङ्गा खियाऊ कि, मङ्गलबारको अँधेरीमा गजल गङ्गा बगाऊ कि, गजलकै जलमाथि एउटा डुङ्गा खियाऊ कि।
12: हरेक मङ्गलबार राति 10 बजेको हिन्दी समाचारपछि रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।